0: आप इन दोनों की शादी करें ताकि आपसे एक शानदार पार्टी मिल जाए।
1: श्योर।
2: लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा, शादियां दो तो पार्टियां भी तो होनी चाहिए।
0: Oh yes, of course. Why not? Why not? Come on, let's go.
2: Hello, big man. Hello, big man.
0: अपनी जिंदगी में
2: Hello, big man.
0: अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा आदमी है। अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा आदमी है।
3: Oh, you are mistaken.